0: घंटे बाद अपने आप ही सारे डिजोल्व हो जाएंगे एंड तुसी अपने अगले दिन की तैयारी करनी जड़ी है
1: बिल्कुल
0: शुरू कर
1: बिल्कुल
0: दोगे,
1: बिल्कुल
0: पुराना दिन भूल के नवे दिन की तैयारी करोगे। सो बेसिकली जदों भी कोई बच्चे को स्ट्रेस आता है या कोई उन्होंने लगता है कि मैं कुछ अपने ना गलत करने बारे सोचता है, एक बारी जरूर अपने पेरेंट्स का, अपने भैन भ्रावों का, अपने
1: बिल्कुल
0: परिवार का ध्यान जरूर करे कि उन्होंने इन्नी मेहनत बाद 15-20 साल ला के मैंने इतने तक
1: कितना है
0: पहुंचाया
1: सारा
0: है,
1: होया
0: तो
1: है
0: मैं
1: उनके
0: अपनी एक
1: अंदर।
0: सेकंड की जड़ी भूल ना वो सारा कुछ मिटावा ना, उन्होंने वाइट वॉश ना करा।
1: बड़ी
0: जे इस
1: बड़ी
0: तरह
1: बात है
0: अपने
1: बिल्कुल।
0: पेरेंट्स का ध्यान, पेरेंट्स नाल प्यार होगा, अपनी फैमिली नाल प्यार होगा, कदे भी इस तरह का स्टेप जड़ा नहीं ले
1: नहीं
0: सकते।
1: नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल जी, ये तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए है। और ये मैनू लगता है कि स्कूल के विचों शुरू तो ये पेरेंट्स नू भी एक माहौल दे विच होनी चाहिए है, ताकि वो बंदा जिहड़ा कई तो बंदे काफ़ी नैगेटिव चले जाते हैं नॉर्मली, जिहड़ा ओवरऑल एक चलो बैलेंस्ड लोग बनाने कामयाब हो जाते हैं। एक बायस जेंडर बायस जिहड़ा है वो आपां जे गल करिए तां आपां उन्होंने पहले ही कहता जाता है कि हाँ यू आर गर्ल, तुसी सिर्फ तुहाडे वास्ते हैगे स्पैसिफिक, तुसी इस तों इलावा नहीं सोचना। ये एक रुझान जिहड़ा इहदे ते तुहानूं कदे लग्या कि किस किस तरह दा रुझान है?
0: शमी जी, आपां ना हुण पुरानी गल्लां कर रहे हैं
1: जी
0: अजकल
1: जी
0: दा, क्योंकि वही पुरानी गल्लां अपने ना माइंड च हजे भी इनहेरिट हैगियां
1: हैगियां कितें
0: कि गर्ल्स नूं मौका नहीं मिलता या गर्ल्स अग्गे नहीं आंदियां। मैं पहला भी कहा सी तुहानूं ओलंपिक्स की आपां गल
1: हाँ जी
0: करिए,
1: हाँ जी
0: इस बारी
1: बिल्कुल
0: ओलंपिक्स दे विच पीवी सिंधु, साक्षी
1: हाँ
0: मलिक, दीपा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कर्माकर, मैं तुहानूं एक गल दसदा, शायद इन्नी प्रेज इन्नी रिकॉग्निशन किसी मेल एथलीट नूं ना मिलदी जिन्नी प्रेज जिन्नी
1: उन्होंने
0: रिकॉग्निशन
1: मिलती
0: इन्ना फीमेल एथलीट्स नूं मिलिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: लोकी बोलदे बहुत कुछ होणगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दे कुछ बयान आते होंगे, बट मैनू लग रहा है कि अपना देश जिहड़ा बदल रहा है, हुण
1: चेंजेस आ रहे हैं
0: चेंजेस
1: अपने
0: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रही ने।
1: बिल्कुल
0: हुण कोई सक्सेस जे किसी कुड़ी नूं मिलदा हैगा, आई गेस सारे ही लोकां नूं उन्नी ही खुशी हुंदी है जिवें
1: वेलकम
0: उहनां दी
1: करते हैं
0: कोई,
1: बिल्कुल
0: उहनां दी भैण, उहनां दी कोई घर दी परिवार दी मैंबर ने कि जिवें ओह खुश हुई। मैं आप मैच वेख्या सी पीवी सिंधु वाला,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तुसी
1: बिल्कुल जी
0: साडे घर च कोई बैडमिंटन नहीं वेखदा, कोई खेडता नहीं हैगा,
1: ठीक है जी
0: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जणा ने टीवी दे अग्गे रह के मैच वेख्या, ते जदों उहने सेमीफाइनल जित्तिया तुसी यकीन नहीं मानोगे इन्ना असी नचे, मेरी
1: सही सही
0: आई
1: गल
0: एस
1: है,
0: सी सिलेक्शन होने इन्ना नहीं लोकी नचे होंगे जिन्ना उत्थे नचे
1: क्या
0: सी,
1: बात है
0: पूरे
1: वाकई
0: पूरे
1: वो
0: बाजार दे
1: उस
0: विच इस
1: देश
0: तरह
1: में।
0: दा
1: हाँ
0: माहौल
1: जी
0: सीगा।
1: सही गल है
0: ते
1: ना
0: कहिण दा भाव इही है कि अजकल दा जिहड़ा साडा सोसाइटी है वो बदल रही है, होपफुली अग्गे होर पॉजिटिव चेंजेस आनियां,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: बट जे किसी कुड़ी नूं रिकॉग्निशन मिलदी है अपनी मेहनत नाल, उन्हें रिकॉग्निशन हासिल की है, साक्षी मलिक हरियाणा तो
1: हाँ
0: आपां
1: जी
0: कहिंदे
1: हाँ बिल्कुल
0: लोएस्ट लोएस्ट
1: बिल्कुल
0: एक्सरे शो हैगी हरियाणा
1: हाँ
0: दे
1: जी हाँ
0: विच,
1: जी
0: हरियाणा एंड नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो कि नहीं उन्हां नूं रिकॉग्निशन
1: यानी
0: मिली।
1: एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग आप
0: एब्सोल्युटली
1: कहीए, तो ये सिल्वर लाइनिंग भी हुण जिहड़ी है धुप्प 'च तब्दील हुंदी जा रही है, ते क्लाउड जिहड़े है उन्हां नूं लगभग बस्ट कर ही लिया आपां क्लाउड बस्टर हो चुके हैं,
0: इन्हें अब तुसी
1: उजाला आ रहा है।
0: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा, सब से कुड़ियां अगे आ रही ने। अभी हमने
1: जी
0: बोर्ड दे रिजल्ट्स आए उदों कुड़ियां सब तो अगे सीगियां,
1: जी जी जी
0: कुड़ियां रिकॉग्निशन हासिल कर रही ने, मेहनत कर रही ने। असी जस्ट जिवें अपने बच्चों वांग आपां कुड़ी मुंडे लईए ना, आपां बच्चे ना ना
1: हाँ जी हाँ
0: लईए,
1: जी
0: जिवें
1: बिल्कुल
0: बच्चों नूं इक्को इक्को वर्गा आपां सपोर्ट देना, इक्को वर्गी
1: हाँ
0: ग्रूमिंग देनी है।
1: फिर गल ही खत्म हो जाती
0: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार यही है
1: यही है
0: कि जदों
1: बिल्कुल
0: बच्चा वध रहा उग रहे हैं, पौधा उगता हूँ, बच्चा
1: बिल्कुल
0: उग रहा हैगा
1: हाँ जी हाँ
0: उदों
1: जी
0: आप उन्होंने प्रॉपर खाद देती, पानी लाता,
1: बिल्कुल
0: उदा
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: जी
0: लाता, ट्री गार्ड लाता, वो
1: बिल्कुल
0: बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा, उस तो
1: अगे
0: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेना।
1: बिल्कुल सही जी बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहो?
0: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही, मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी,
1: हाँ जी हाँ
0: और
1: जी
0: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हुंदे सीगे पेरेंट्स नाल, मोबाइल इंटरनेट फेसबुक ये सब चीज़ां नहीं हुंदियां सीगियां,
1: जी
0: असी आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे, उहनां नूं दसदे हुंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे फ्रेंड्स ने ये
1: जी
0: कीता, साडे टीचर्स ने ये कीता। वो जिहड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
1: बिल्कुल
0: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे, मोबाइल दे गेम्स
1: वो एक हाँ बिल्कुल
0: मोबाइल्स तो लग जाएंगे, पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि अपने बच्चों नूं घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्होंने पूछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ
1: ਜੀ।
0: ਵਿੱਚ

0: की होया, भावें तुहानूं नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल 'च सी,
1: हाँ
0: मेरी
1: जी
0: मम्मी मैनूं पुछदे हुंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज 'च की गया, की कीता, की चीरा
1: ठीक,
0: फाड़ी
1: हाँ
0: कीती,
1: जी, हाँ जी,
0: ये भी
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: उन्हां नूं दसदा हुंदा सीगा।
1: क्या
0: तो इस
1: बात
0: तर्हां
1: है,
0: दा जदों तुहाडा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाना है, टेक माई वर्ड, तुहानूं पूरी लाइफ, पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करन की लोड़ नहीं है। और
1: जी,
0: जदों वड्डा भी हो जूगा, तुहानूं दसूगा कि मम्मी मैं अजे ये किया, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहेगा, तुहाडा प्यार भी बना रहेगा, तो बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वह बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया अज सारियां गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
0: थैंक यू शमी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों, अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਇਟ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।

तैनो मिल जाऊ दुनिया सारी। कोई फिक्र नहीं हुंदा जिन्हां दे सिर ते हुंदियां मावां। कोई फिक्र नहीं हुंदा जिन्हां दे सिर ते हुंदियां मावां। मस्ती विच बचपन।

एक लख अंग्रेज राज कर रहे ने ते बंदे ने जा भेड़ा ने। पंजाबियां ने सोचना शुरू कर दिता साड़ी भी कोई जत्थेबंदी होनी चाहीदी है। कनेडा सरकार ने पंजाबी हिंदियां नू देश दे विच दाखल होण तों रोकण दे लई 1907 नू जिहड़ा सीगा फुरमान जारी कर दिता कि सिर्फ उही लोग जिहड़े ने आ सकदे ने जिन्हां दे कोल सिद्धी जिहड़ी है कनेडा दी सिद्धी टिकट होवेगी ते $200 जेब दे विच जिहड़े होणगे। उस समय कोई सीधा जहाज कनेडा नहीं सी जांदा। उथों दी बनी जिहड़ी सी यूनाइटेड लीग ते कुछ पंजाबियां ने इस कानून का विरोध भी किया ते उच्च अधिकारियां ते मंत्रियां नू मिलके याद पत्र जिहड़े दित्ते गए पर कोई हल ना निकलदा। वेख के जिहड़ा देश नू आजाद करवाउण दे लई मजबूत जत्थेबंदी बनाउण दा फैसला लै लिया गया। गदर पार्टी की पहली मीटिंग अज दे दिहाड़े दे उत्ते 21 अप्रैल 1913 नू अस्टोरिया दी इक जिहड़ी सी मिल दे विच हुंदी है जिस दे विच प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना, मीत प्रधान केसर सिंह ठाठगढ़, सकत्तर लाला हरदयाल, खजानची पंडित कांशी राम मड़ौली चुने गए। नवंबर 1913 दे विच पहला उर्दू ते फिर पंजाबी दे विच गदर अखबार कढ़िया जांदा है। पार्टी दा मुख मतव जात पात धर्म तो उपर उठ के देश दे विच हथियारबंद इनकलाब दे नाल अंग्रेज सामराज दा जड़ा सी खात्मा करके पंचायती राज कायम करना सी। गदर पार्टी दे नौजवान आगू करतार सिंह सराबा, अज उन्हां दा जिक्र करांगे ते उन्हां दे जड़ा जिथे ओ पढ़े ने लिखे ने स्कूल उन्हूं ढोण दीआं जड़ियां ने पूरीआं चालां चलीआं जा रहीआं कि उन्हूं खत्म कर दित्ता जावे। पर गदर पार्टी दे नौजवान आगू करतार सिंह सराबा, जे कोई पुछे कौन हो तुम तो कह दो बागी नाम मेरा, जुलम मिटाना हमारा पेशा, गदर करना है काम अपना, नमाज संध्या यही हमारी और पाठ पूजा सब यही है, धर्म कर्म सब यही है हमारा, यही खुदा और राम कहिंदे अपना है। हिंद दे बहादुरों क्यों बैठे चुप जी, अग लगी देश ना सहारे धुप जी, बुझणी ए तां ही है शरीर तज के, बनी सिर शेरां दे की जाना भज के, सिर दिते बांझ नहीं कम सरना, युद्ध विच पवेगा जरूर मरना, पवे ललकार शेरां वांग गज के, बनी हथ शमशीर कुद पवो मैदान जी, मार मार वैरियां दे लाहू घाण जी, वैरियां दे आओ लाहू लहू पिए रज के, बनी मार लईए वैरी मर जाइए, ते आप जा कायरता गरीबी मिट जावे ताप, तां पा लईए शहीदी पूरे शेर गज के, बनी सिर शेरां दे की जाना भज के। इसे तरह जिक्र आ जांदा है ज्ञानी दित सिंह उन्हां दा। करम कांड अंध विश्वास ते वहमा भरमा मड़ी मसाणा पखंडवाद खिलाफ जहाद छेड़न वाले पंथ रतन ज्ञानी दित सिंह उन्हां दा जन्म भी अज दे दिहाड़े दे उत्ते 21 अप्रैल 1850 नूं आनंदपुर कलोड़ फतेहगढ़ साहिब दे विच होया ते मुढली पढ़ाई गुलाब उदासियां दे डेरे तों जिहड़ी प्राप्त कीती सी। इस दे दौरान ही धार्मिक पुस्तकां ते धर्म अध्ययन दी रुचि पैदा हुई। भावें उह स्कूल नहीं गए फिर भी ज्ञानी करके लाहौर दे ओरिएंटल कॉलेज दे विच पंजाबी पढ़ाउण लग पए ते उह पंजाबी दे पहले प्रोफेसर मन्ने जांदे ने। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੋਢੀ ਸਾਧੂ ਦਯਾਨੰਦ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਗਾ ਗਪੋੜ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਆੜਾ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੋਧ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਉੱਤਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਕਮਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

एहसास करो ओ मेरी माँ है कम्बदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चम्बदी। एहसास

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया आपां तुर चलिए चंदी सैर नूं।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन्न दी सैर दे नाल ही असीं इस काम्य फल दा इत्थे ही समाप्ति करने आ। ते अगली काम्य फल तक हरवंश सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंश सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।